می از آن در وشاب امون کودان در فولار موت دکتے سایده اور آپ نے وہ کوئی آپ میرا ذرا کھا رہا ہے تامشا دیکھتے سین ایجے آئی جامر فولا کھونی ای دوش کل جامر فولا ما ای دوش آنا آنا باپ ہوئے فاملی فولا مانوس کرتے آنا مدلیس کالا ہے سیدہ فولا زمان دیسی मैं जान जान बोला वो ठीक वो तो तू ही लगाए थे जिसे मारे नहीं मैं क्या किया था बोला मैं मास्टर हूँ ऐसे तो इसे सूर एक दुश्मनी एक दुनिया जाएगा अरे यार वो तो बोल को रहने को भाई रोजर सीधे रखे फूला मैं मानुष करते कर मैं फूला मैं मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मु